आठ पहर गुण गावा। सा वड्याई दे

ਆਸਰਿਓਂ ਕੇ ਆਸਰਾ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸ।

ਰੱਬ ਆਪ ਸੁਵਾਮੀ ਆਪੇ ਰੱਖਾ ਆਪ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਾਇਆ ਆਪ ਪਿਤਾ ਆਪ ਮਾਇਆ।

सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दहे दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जने नाम ते आया गए।

गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ।

रमा तार ले मैं अजान जन तर पे ना जानो बाप बीठला बहा दे

ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।

पिता माता धरत महार दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाई आबरियाई वाच।

0: गए मसकत खार, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया गए मसकत खार, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की
1: Thank you.

Thank you.

हिन हिन रम गुर गम हर दम नह दम हर कंठ नानक उरखा दी रे हिन रम गुर गम हर दम नह दम।

Evet, doğru.

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Thank you.

ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਅਸਾ ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਸਭ ਕੋਈ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਿਰ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਾਈ ਕਹਿਣ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾ ਕੀ ਆ ਵਡਿਆਈ ਆ ਤੁਦ ਮਿਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਾਈ ਆ ਕਰਮ ਮਿਲਾ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੀ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤੁਸਾ ਕਿਆ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚ ਨਾਓ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ ਤੁਭੁੱਖ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੀ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੋਆ ਨਾ ਕਹੋਈ ਜੇਵੜ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਵਾਜ ਸੁਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਬਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਾਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧਨ ਧਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਾਹਿਰ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜਨ ਧੋ ਪਾਈ ਤਾ ਕਰ ਜਕਾਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਬਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੀ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਉਡੇ ਉਡਾ ਵੈ ਸੈ ਕੋ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖੁਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਰ ਵਰਿਆ
सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइया तेरा अंत न पार वरिया राग असम हल्ला चौथा सुपुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अकमा कम अपारा सब त्याव ही सब त्याव है तुद जी हर सच्चे हर जनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भगता जी हां तुद बिने अवर न जाना तू पार बहम बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा जो सेवा है जो सेवा है तद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी से मुकत भय जन हर त्याया जी तन टूटी जम की फासी जन नरपाओ जन हर नरपाओ त्याया जी तन का पाओ सब गवासी जन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जन हर त्याया जी जन नानक तन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक रहे हर पूजा जी तप तपह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़े व सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव ही मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख परंपर करता जी तुद जीवड़े अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुदे आपे भाव सोई वरता जी तू आपे करहे सो होई तुदे आपे श्रेष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नान गुण गाव करते के जी जो सब सका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचार मेंडा साई जत भाव सोई थी सी जो तू दे सोई हम पाई रा साव तेरी तू सब नी त्याया जिसनो कृपा करे तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुदे आप बिछोड़े आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अंत सब तेरा खेल बेजोग मिल बिछोड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना आए सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तद बिन दूजा अवर ना कोई तू कर कर वेख जान है सोए ना नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तत सरवरड़ा पहिल नमासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह भगन ही चाल हम देखा तह डूबी अले
मन एक न चेत समूढ़ मन हर विसरति रे गुण गलियारा ना जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुकदा जन्म भया प्रणवत नानक तन की शरणा जन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्रापत मान खुदे हरिया गोविंद मिलन की तेरी वरिया और काज तेरा कित न काम मिल साध संगत भज के मन नाम सरंजाम लाग भव जल तरण कै जन्म मृथा जा तरंग माया कैर जाप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधु न जानिया हर राया कहु नानक हम नीच करमा शरण भरे की राख शरमा जाप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साधु न जानिया हर राया कहु नानक हम नीच करमा शरण भरे की राख शरमा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कव्यवाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण न मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपार हमरे दुष्ट सब तमकाव हो आप हाथ दा मोह बचाव हो सुखी बसा मोरो परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर द करिया सब अरन कवा संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें साड कोई वरना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ मुझे वरिया मरण काल का त्रास नवरिया हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्त जू करियो रक्षा और आख ले मुझे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम परी चतुर्दश कंता काल पाई ब्रह्मा बापतर काल पाई शिव जू अवतर काल पाई कर विष्णु प्रकाश सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथिया जवन काल सब लोग स्वर नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनाया देव दैंत जक्षन उपजाया आदि अंत का अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दिया सतरन को पालम बद किया कट कट के अंतर की जाना था भले बुरे की पीर पछाना था चीटी ते कौंचरिया स्थूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना कट कट के पट पट की जाना जावद कर करा करतार प्रजा तरतव दी अपार जब या कर करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझो चार
तुम सब ही तेरा कनरालम जानत वेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेद जाको भेव न पावत भेद ताको कृपान अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव का कैत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्धा जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखन जाय पसार कह बिद सजा प्रथम संसार एक रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कहीं भूपा अंडा जेरा जा सेत जकीनी अतपज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम भव आद जुगाद स्वरूप सियाम भव आवरक्षा मेरी तम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिति उठ बतत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अष्ट तब सरनी परी तिनके दुष्ट दुखित हवै मरी पुरख जावन पग परे तिहारी तन के तुम संकट सब टारी जो काल का एक बार ते है ताके काल निकट न है रक्षा हुई तह सब काल दुष्ट अरिष्ट तरी तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तन कमो हर हो रिद सिद कर्म सब होई दुष्ट सासकन कोई एक बार जिंद में संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम त्योहारो का दारद दुष्ट दुख तेरा

सर्वधर्म हो साय दुष्ट दुख तेल हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दल हो उबारी सर्वधर्म हो साय दुष्ट दुख तेल हो बचाई सोइया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते कुआंक तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक मत एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे तो बखाने दौर सगल द्वार कौ साढ़ गयो तुहारो द्वार

सगल द्वार कौ साढ़का गयो तुहारो द्वार माहे गए की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो ता गाव होरी केरा मन जिनी वसाया नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ई मन मेरे आ तू सदर हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सोख्य मन हम सारे का नानक मन मेरे सदर हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर तन तेरा सब किश है जिस देव सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन का मन वसया माजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई आ कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाई आ सदा कुरबान कीता गुरु बेटा जिस दिए वड़ियाई आ का नानक सुनो संत सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पांच शब्द तित कर सुभागा कर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारी पांच दूत वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम बाया तुद जन कौ से नाम हर का लागे का नानक तस खोआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन भए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवता सतगुर आ पर पूरे मनवंत नान गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवता सतगुर आ पर पूरे ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ अमृत नाम ठाकुर का पाया जिसका सबसे आधार जे को खावा जे को पुंचा तिसका हुए उधार ए वास्ता जी नह जाई नित नित राखुर तार तम संसार चरण लगतरिया सब नानक ब्रह्म पसार श्लोक महला।

0: होई मैनेर गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिले नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीवा हरे तरस पया मेरा मत होई सतगुर सजन मिले नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीवा हरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै

देख चलाई ते गवाही देख के आन डिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जे वाहे गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निभाही तना दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान सिर अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगा जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नवाने आंदे मान नेताने आंदे तान नेओटे आंदी ओट धन धन

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अगाह कूत्रांग पिछा फिर न मुहुड़ला नानक सज्जो विहार बहुन हो भी जन्मड़ा सज्जन मेंडा चाहिया हब कही दा मित हबे जानने अपना कही न ठाहे चेत गुजड़ा ला दमलाल मथई प्रगटथिया सोई सुहावा थान जिथे प्रिये नानक जी तू मुठिया जा तू मेरा वाला है ता क्या मोशंदा तुद सब किस मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लखमी तोटन आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह बैरी मित्र सब कीतिया नह मंगह मंदा लेखा कोई न पुछई जा हर बख्संदा आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोबिंदा सबे काज सुवारे जा तुद पावंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुर गोबिंदा सबे काज सुवारे जा तुद।

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

नमः नमः तम ही प्रतपाल हम बारक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालका नायक खसम हमारे नमख नमख तुम ही प्रतपाल हम बारक तुम रे तारे जेहबा एका कवन गुण कहिया बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लहिया राव कोट पराध हमारे खंड अनक विधि समझाव हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखाव तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सहेली राख राखण हर दयाला नानक कर के गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सहेले राखो राखण हर दयाला नानक कर के गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

मेरे लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा।

प्राणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

Thank you.

गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सुखहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परस आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। हो वह सिफत खसमदी, नूर अर सोह कुर सोह चटिया, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवा, तुम दात ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारक तुमरे तारे। तुम दात ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारक तुमरे तारे। जेहवा एक कवन गुण कहिया, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लहिया। कोट पराध हमारे खंड हो,
नानक विधि समझावहो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावहो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सोहेब

0: जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत।

Thank you.

चा लागे उठ नाम जप निस्बा सुर आराध करा तुझे न व्यापई नानक मिटायो पा बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे राख पिता प्रभ मेरे मुहि निर्गुण सब गुण तेरे तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सहेले रखो राखण वार दयाला रखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले जो हमरी विद होती में

हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन के रा, जित मिले चुके सब सोग संतापे।

0: तर तरिया तर तरिया।
1: सलोक महला पहला। सच तेरे खंड सच ब्रह्मांड, सच तेरे लो सच आकार, सच तेरे करने सर्व विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चा सब तान सच्चा सब जोर, सच्ची तेरी सब सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदर सच्चे पातशाह, नानक सत्य आयन सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
0: वड्डी वडाई जा वड्डा नाओ, वड्डी वडाई जा सच न्याओ, वड्डी वडाई जा निचल थाओ, वड्डी वडाई जाने आला, वड्डी वडाई बुझै सब पाओ, वड्डी वडाई जा पुछ न दात, वड्डी वडाई जा पे आप, नानक करन कथनी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा।
1: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे कवच वास, इक ना हुक्म समाइल, इक ना हुक्मे करे विनाश, इक ना पहने कड़ ले, इक ना माया विच निवास, ए पे आख ना जा पई जे किसे अणे रास,
0: नानक गुरमुख जानी है जा को आप करे परगास, फोड़ी नानक जी पाए कै लिखना वै, धर्म बहाल्या उत सच्चे ही सच निबड़े चुन वख।

மூர்க்கமா.

0: ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ।
1: ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ

दीपा लोआ मंडला खंडावर भंडा अंडज जेर जुत बुझा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए।

ಕೊಡಿ ಸೇವಕವಾಯೇ, ಮತ ಕೊಡಿ ಸೇವಕವಾಯೇ.

साधन मारिए जेहा काले काल ना तेवे ना उपचारिए ऐसी कला ना खेडिए जित दरगे गया हारिए पड़िया त्यों मियां विचारिए विचारिए मोह चले सो अगे मारिए।

यह मीठी जी माहे हिताने बाल बांति छाप कर तो पावा पेख

माया मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात हृदय ना बिचारो, रथ नासन गज सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिदारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दिष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत बिकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कलतर साजन साख, उल्टत जात बिरंग की शार, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्री पतनाथ शरण नानक जन,

0: मान दानमग जोहन हित चीत दे ले ले पारी साजन सैन मित सुत पाई ताहू ते लै रखी निरारी पावन पावन पूरक मावन ए विद करत औतन जारी कर्म धर्म संजम सुचनेमा चंचल संग सगल विदहारी पस पंखे बिरख स्थावर बहुविध जोन परम्यो अत पारी खिन पल चसा नामने सिमरियो दीना नाथ प्राण पासारी खान पान मिठस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चनन समुद्रे और माया मगन चले सब डारी।
1: ब्रह्मा दीक्षित संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोज ते गोरख धरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अर दानव एक तिल ताको मरम न पावत प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत।

0: संत आप करियो है।
1: गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व प्रो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी। स्नान दान तापन सुच किरया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंद जी तान प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समर्थ नानक दास सदा बलहारी।
2: आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंद्यो ना जात विदे मन

निर्मल नाम सुधा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर थायात बाड़ सुपर सदा सा बिदरत नागर, संत

सोरठ महला नावा।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोविंद ना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: जब माली तान मिले छा खाई अंतर पूजा पड़क ते बस संजम तुरका भाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छरी बगाइन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाग ओना पिया वे ओई साग कुड़ी रास कुड़ा वापार कुड़ बोल करे आहार शर्म तरम का डेरा दूर नान कुड़ रहा पर भूर मत्थे टिका तेड़ तो तीख खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर वे प्राण मलेश तान ले पुजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देखे चौंका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे एहुन सड़ा फिटे तन फिटे फेड़ करें मन जूठे चली भरें

0: जे महा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस जानी है पितरी चोर करे वड़ी है हद लाल के मुसफिये करे नानक अगे सो मिले है जे खटे काले दे महला पहला
1: ज्यो जोरो सरना बनिया वे वरवा जूठे जूठा मुख वसै।